0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: जबरदस्त हिट्स,
8: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
9: फजा 97.1 FM,
8: आई लव इट।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फिजा 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।
1: You are listening 97.1 FM.

Better. The radio station for people who love music.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड
10: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए. गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी रब्ता करें 07593150669. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा.
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
8: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
10: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है. आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है. जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में. तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद. मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
11: You are listening 97.1 FM.

Oh, my God.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.
5: ठहरिए जरा. ये commercial तो सुन ले.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
8: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
7: सलासा ट्यूशन सेंटर?
8: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
7: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
8: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
7: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
9: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
10: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
11: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are the same. We are... Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

खोई से तुमको देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपना।
1: You are listening 97.1 FM.

0: कमर्शियल टाइम।
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज
8: फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
11: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: This is a public service announcement.
12: The station.
13: That plays
14: foot tapping music.
15: Hazar 97.1 FM.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.
8: 97.1 FM.
9: 24/7, 365. This is
10: Fazana 97.1 FM.
9: Rokoma.

You are fame. We are fame. Fazan 97.1 FM.

और रेडियो फजा 97.1 एफएम है हमारी एप्लीकेशन, सो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से ताकि आपको हमारी लाइव अपडेट्स मिलती रहें और आप इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहें। सो जी लिसनर्स, अब बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर अपने सफर के करीब करीब पहुंच चुके हैं या हैं अभी रास्ते में और अपने डेस्टिनेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर भी बने इसी तरह से खूबसूरत, इसी तरह से हंसी, तो आप अपने सफर को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं हमारे साथ यानी रेडियो फजा 97.1 एफएम के साथ। आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। जी हाँ लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो इसी तरह से हमारे साथ मौजूद रहिए और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अभी तक जैसे कि 10 बज चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि काफी सारे लोगों ने अपने दिन का आगाज कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने दिन का आगाज नहीं किया, सो इट्स द टाइम, इट्स द मोमेंट, आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज और बनाते हैं आज के दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार। जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि जहां बात होती है एक नए स्टार्टअप की यानी कि एक नए दिन के स्टार्टअप की, सो जरूरी है कि हम अपने दिन को किस तरह से स्टार्ट करें। ऑब्वियसली एक अच्छे मील के साथ, एक गुड ब्रेकफास्ट के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन खूबसूरत बने, पॉजिटिव बने, सो यू हैव टू नीड अ गुड ब्रेकफास्ट। क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं करेंगे तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी जिससे आप पूरा दिन काम कर सकें, ना सिर्फ काम कर सकें बल्कि पूरे दिन की हैक्टिक रूटीन को हैंडल कर सकें।

See the listeners, ये तो थी हमारी बॉडी की नीड, क्योंकि हमें हर एक नया दिन स्टार्ट करने के लिए जरूरत होती है बहुत सारी एनर्जी की, और एनर्जी कहाँ से आती है, एक अच्छे एक गुड ब्रेकफास्ट से। और साथ ही साथ अब बात करते हैं उन चीजों की जो माइंड को फ्रेश करती हैं, जैसा कि आज हमने स्टार्ट करना है एक नया दिन, और एक नए दिन के साथ नए दिन का आगाज भी थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाहिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहिए। तो डियर लिसनर्स, मेरे सभी लिसनर्स और मेरी सभी प्यारी डीवास जो कि इस वक्त मेरा शो सुन रहे हैं, आइए मिलकर करते हैं अपने इस दिन का आगाज। किस तरह से करेंगे, करेंगे हम इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ। तो जी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक ताकि हमारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि माइंड को फ्रेश करना बहुत जरूरी है ताकि दिन को आगे बढ़ाया जा सके। सी तो लिसनर, सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक। आपसे मुलाकात होगी ट्रैक के उस पार, तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए।

इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ही खूबसूरत सा डिफरेंट सा मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे जो बना देगा आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और भी ज्यादा मीनिंगफुल। तो आइए सुनते हैं आज का खूबसूरत सा कोट।

सो बेसिकली हमारा आज का कोट ऑफ द डे कुछ यूं है कि स्टार्स डोंट कम्पीट विद द सन, दे जस्ट वेट फॉर द राइट कैनवास टू शो दैट द डार्कनेस वॉज नेवर देयर एनिमी बट देयर स्टेज. लिसनर्स, आइए जरा इस बात को जरा डीपली जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं. सो हमारा आज का मोटिवेशनल कोड ये कहता है कि जो सितारे होते हैं वो कभी भी सूरज से मुकाबला नहीं करते. लाइक सिंपली अगर देखा जाए तो सूरज की अपनी जगह है, सितारों की अपनी जगह है, दोनों का मकसद, दोनों का काम थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा मिलता जुलता है. यानी कि अगर हम देखें तो सूरज भी उजाले में मतलब अंधेरे में उजाला करता है. यानी कि जब हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा तारीकी होती है या बहुत ज्यादा गम के साए आ जाते हैं तो सूरज एक रोशनी की मानित एक उजाला बनकर आता है. और अगर हम दूसरी जानब देखें सितारों की जानब, तो सितारे भी कुछ यूं ही करते हैं कि जब रात हो जाती है और आसमान में हर तरफ बहुत सा अंधेरा छा जाता है तो सितारे क्या करते हैं, रोशनी का काम करते हैं. भले वो इतनी रोशनी हमें प्रोवाइड नहीं करते जितनी रोशनी हमें सूरज देता है, लेकिन दोनों का काम, दोनों का मकसद और दोनों का पर्पस एक दूसरे से काफी मिलता जुलता होता है.

सो बेसिकली सितारे यानी कि स्टार्स कभी भी सूरज से कंपटीशन नहीं करते, उसको कम्पीट नहीं करते, बल्कि वेट करते हैं खुद के टाइम पीरियड का, यानी कि वो इस चीज का वेट करते हैं कि कब उनका टाइम पीरियड आएगा और कब वो आसमान में चमकेंगे।

जी तो लिसनर्स, आई थिंक सो आप सभी को ये कोड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा. आइए जरा थोड़ा मजीद सिंपल करके इसे समझते हैं. सो बेसिकली हमारा आज का कोड ये कहता है कि हर एक इंसान हो, चाहे हम इंसान हो या फिर कोई भी चीज हो, हमें दूसरों से कम्पीट करने की जरूरत नहीं होती, हमें दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन करने की जरूरत नहीं होती. हमें जरूरत होती है तो इस चीज की कि हम वेट करें अपने टाइम पीरियड का, उस एक मोमेंट का जहां हमें वो पोटेंशियल मिलेगा, हमें वो आउटपुट मिलेगा जिसमें हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि जैसा कि देखिए, अब सूरज का काम क्या है, रोशनी प्रोवाइड करना, और तकरीबन सितारों का काम भी यही है कि वो हमें रोशनी प्रोवाइड करें. लेकिन जो स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी सूरज से कम्पीट नहीं करते, और ये नहीं कहते कि सूरज तो ज्यादा रोशनी प्रोवाइड करता है और हम उस तरह से रोशनी नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि स्टार्स वेट करते हैं अपने टाइम पीरियड का, यानी कि शाम होने का, कि कब उनका टाइम पीरियड आएगा जहां सूरज नहीं होगा, वहीं स्टार्स को मौका मिलेगा कि वो खुद को दिखा सके और दुनिया को बता सके. सो सिंपली मीन्स ये है कि आपको, मुझे, हम सबको अपनी जिंदगी में दूसरों से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इस चीज की जरूरत होती है कि हम अपने आप में मेहनत करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, और अपने टाइम पीरियड का वेट करें. यानी कि हर एक चीज का, हर एक इंसान का एक वक्त मुकर्रर होता है, यानी कि हर सितारा सिर्फ अपने मुकर्रर वक्त पर ही चमकता है. सो अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, और तो हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, अपने माइंड से नेगेटिविटी को निकाल देने की, नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर देने की, और हमें इस चीज की जरूरत है कि हम मेहनत करें, साथ ही साथ इंतजार करें अपने टाइम पीरियड के आने का.

जी तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का मजेदार सा मोटिवेशनल सा कोट। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कोट अच्छा लगा होगा और समहाउ कहीं ना कहीं इसने आपके माइंड में जरूर एक इम्पैक्ट छोड़ा होगा। तो जी लिसनर्स, इस कोट पर अमल करते हुए आप और मैं अहद करते हैं कि हम अपने आज के इस दिन को इसी तरह से पॉजिटिव बनाएंगे, मोटिवेशनल बनाएंगे और हम मेहनत करेंगे लेकिन

कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हम अपने आप को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देते हैं और समहाउ हमें ऐसा फील होता है कि हम में वो चीज़ नहीं है जो दूसरों में है, या दूसरे हमसे बेटर हैं और हम उस तरह से नहीं हैं। तो ट्रस्ट मी माई लवली डिवास, हर एक इंसान के अंदर होते हैं कुछ अच्छी क्वालिटीज़, कुछ बुरी क्वालिटीज़। आई नो हो सकता है कि जो क्वालिटी दूसरों में हो आप में ना हो, मोस्टली चांसेस हैं इस चीज़ के, लेकिन जो चीज़ आपके अंदर है वो हो सकता है दूसरों में ना हो। सो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी क्वालिटीज़ पर वर्क करें और अपनी क्वालिटीज़ को जांचें। जब आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिजनेस स्टूडेंट्स को स्वॉट एनालिसिस करवाया जाता है, ये चीज़ देखने के लिए कि हमें पता चले कि हमारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं और हमारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स क्या हैं। सो पर्सनली मेरा बिलीव ये कहता है कि हम सभी को, आपको, मुझे, हम सबको भी अपना एक स्वॉट एनालिसिस करते रहना चाहिए ताकि जिंदगी आगे बढ़ सके और पॉजिटिव होकर आगे चल सके। सो लिसनर्स, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है और इतनी सारी फिलोसफी और मोटिवेशनल बातों से तो आप सभी की नींद अब तक उठ चुकी होगी। सो इट्स टाइम कि हम स्टार्ट करें अपने इस दिन को और रिफ्रेश करें अपने माइंड को। सो आपको क्या जरूरत है, सबसे पहले कि एक चाय का मग उठाएं, बालकनी में खड़े हों और बाहर के इस खूबसूरत से व्यू को, मौसम को एंजॉय करें। जैसा कि मिडिल ऑफ जून से भी अब टाइम पीरियड आगे चलता जा रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी अपने पीक पर जाती जा रही है। आई नो कि गर्मी की वजह से समहाउ समटाइम्स हमारा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है और मौसम के चलते चलते इंसान थक भी जाता है डेली काम काज में, बट ऑनेस्टली चाहे हो विंटर या हो समर, हर मौसम की अपनी खसूसियत होती है। सो हमें हर चीज को अपने मुताबिक इंजॉय करते रहना चाहिए। तो जी लिसनर्स, इसी के साथ साथ शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, क्योंकि जहां हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं वहीं शो में भी आगे बढ़ना जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM के साथ कनेक्टेड रहिए।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
16: The best

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सबको वेलकम करती हूँ द डीवा डायलॉग विद रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM में। जी तो लिसनर्स, एक बार फिर से बताती चलती हूँ, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो आप जल्दी से इस नंबर को सेव कर लीजिए ताकि आप हमसे शेयर कर सके अपने ख्यालात, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो हमसे रिलेटेड तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, और रेडियो फजा 97.1 है हमारी एप्लीकेशन जिसे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, अगर तो आप एप्पल यूजर हैं सो आपने जाना है एप्पल स्टोर, और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं सो सिंपली जाना है एंड्रॉयड यानी कि गूगल स्टोर पर, वहां जाकर सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो आप जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए इस एप्लीकेशन को ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें।

जी लिसनर्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कल के अपने शो में, मैंने आप सभी को एक म्यूजिकल ट्रैक सुनाया था और हमने कहा था कि हम इस पर डिस्कस करेंगे कल, तो आज दोबारा से सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक और उस पर करते हैं थोड़ी सी डिस्कशन।

सी तो लिसनर्स, जैसा कि हमने ये साउंड ट्रैक तो पहले भी सुना था एंड देन मैंने सोचा था कि इसी से आपको कुछ हम डिस्कस करेंगे. सो द डिस्कशन इज ये कि आप सभी को भी ये ड्रामा सीरियल देखना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा बहुत अच्छा है. इवन कि इसका स्क्रीन टाइम, प्लॉट एंड इवन के करेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, और आपको इसमें वो

सो गुड लिसनर्स, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक न्यू एंटरटेनमेंट रिकमेंडेशन जो कि आपके फ्री टाइम को बना देगी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ आपके बोर्डम को भी थोड़ा दूर कर देगी। सो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक न्यू सीरीज रिलीज हुई है, सॉरी Amazon Prime पे, जिसके हम बात कर रहे थे एवरी ईयर आफ्टर समर, जो कि एक बुक अडेप्शन है एवरी ईयर आफ्टर समर की। अगर वैसे स्टोरी की बात की जाए सो इट्स सिमिलर टू द समर आई टर्न प्रिटी, जो कि लास्ट ईयर समर्स में रिलीज हुई थी। सो अगर आपको वो सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो कि बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा फैसिनेट की थी, उस सीरीज के टोटल 3 सीजन थे और आई थिंक सो कि काफी सब लोग कह रहे थे कि सीजन 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट सीजन 2 में जाकर जो करेक्टर्स थे उन्होंने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया था, बट देन सीजन 3 में जाके जो कि फिनाले था उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो ये सीरीज आपको बिल्कुल उससे मिलती जुलती लगेगी और काफी हद तक स्टोरी, प्लॉट और करेक्टर्स सिमिलर हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हेक्टिक रूटीन से बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं और आप फ्री टाइम में इंजॉय करना चाहते हैं सो लाजमी इस सीरीज को देखिएगा एंड देन देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और इस टोटल सीरीज के अंदर आपके फेवरेट करेक्टर्स कौन से हैं।

जी तो लिसनर्स, जैसा कि अभी वक्त है हमारे शो के उस सेगमेंट का जिसका मोस्टली फूडी लवर्स को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि खाना खाना और अच्छा खाना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो लोग खाने के मामले में काफी ज्यादा पिकी और चूजी होते हैं और चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट, कुछ फ्यूजनल सा खाना खाएं और अपनी बेसिक सिंपल रूटीन से बोर हो जाते हैं। सो आज मैं सभी लिसनर्स के लिए लाई हूँ ऐसे ही मजेदार सी, सिंपल सी और चटपटी सी रेसिपीज, जो कि दिखने में तो आपको मुश्किल लगेंगी, बट जब आप इनको ट्राई करेंगे तो सिंपली बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी होंगी। सो आज हम अपने द स्पाइस किचन में बनाने जा रहे हैं द फर्स्ट रेसिपी, जो कि हमारा मेन कोर्स है, इट्स लज़ानिया। अच्छा, बहुत सारे लोग लज़ानिया बहुत ज्यादा खाते हैं इवन के रेस्टोरेंट में, लेकिन इसको बनाना इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है और बनाना काफी मुश्किल है। बट आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप सिंपल से, बेसिक से, कम इंग्रेडिएंट्स को यूज करके इस रेसिपी को बना सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स, और ये काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा टेस्टी बनेगी, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से हम किसी 5-स्टार होटल में या रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं।

सी तो लिसनर्स, सबसे पहले आप सभी से शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स ताकि आप इनको नोट डाउन कर लें और कुछ भी मिस आउट ना हो जाए. सो बेसिकली लज़ानिया बनाने के लिए हमें बेसिक से कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए. कोई ऐसे डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं है क्योंकि मैंने सोचा था कि हम रेसिपी को बहुत ज़्यादा बेसिक रखेंगे और बहुत ज़्यादा सिंपल रखेंगे ताकि लिसनर्स ये ना कहें कि ये कितनी मुश्किल है और इसको ट्राई करने के बारे में थोड़ी दिक्कत ना हो. सो सबसे पहले हमें चाहिए लज़ानिया शीट्स जिन्हें हम 8 से 10 अदद ले लेंगे, ठीक है. इनको हम अलग से साइड पर रख देंगे. सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है चिकन फिलिंग के लिए, ठीक है. यानी कि हमें चाहिए बोनलेस चिकन या फिर हम कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, 1 kg या फिर 2 kg. इट्स अप टू यू कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, ठीक है. लेकिन जितनी क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ इट्स इनफ फॉर 4 to 5 persons. सो आप यूज़ कर सकते हैं 1 kg. इसके साथ साथ हमें चाहिए प्याज 1 अदद जिसे हम बारीक अच्छे से कट करके रख लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon, टोमेटो की प्यूरी 1 cup, टोमेटो केचप 3 tablespoon, ऑरिगैनो 1 tablespoon, लाल मिर्च पाउडर 1 tablespoon और कुकिंग ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं 3 tablespoon. सो इसके साथ साथ ये तो थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि चिकन फिलिंग के लिए हेल्पफुल रहेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे. अब बात आती है व्हाइट सॉस, ठीक है, कि किस तरह से हम व्हाइट सॉस बनाएंगे. सो उसके इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ. इसके लिए चाहिए हमें बटर 2 tablespoon, फ्लोर चाहिए हमें 2 tablespoon, मिल्क 2 cup, काली मिर्च पाउडर 1.5 tablespoon और नमक हसबे ज़रूरत हसबे जायका. और इस रेसिपी का हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है चीज़. आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चैटर चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़.

जी तो लिसनर्स, ये थे सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आप सबसे शेयर कर दिए. सो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी पर, नोटबुक पर, ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए. सो अब सुनते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक, क्योंकि आई थिंक काफी देर से काफी गपशप हो गई है और गुफ्तगू का सिलसिला तो आगे बढ़ाएंगे, रेसिपी को भी आगे लेकर चलेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक का, ताकि माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया जाए. तो सुनते हैं ये ट्रैक, और ट्रैक से वापसी पर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे.

सी तो लिसनर्स, जैसा कि जब भी हम कोई काम कर रहे हों या फिर कोई ना कोई गुफ्तगू कर रहे हों तो साथ साथ म्यूज़िक थोड़ा सा चलता रहना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक से इंसान का माइंड रिफ़्रेश होता है। साथ ही साथ म्यूज़िक को बहुत सारे लोग ऐसा थेरेपी के तौर पर भी यूज़ करते हैं। सो आई थिंक सो कि जब ज़्यादा डिस्कशन हो जाए तो साथ साथ एक अच्छा ट्रैक ज़रूरी होता है माइंड को एनर्जेटिक करने के लिए, फ्रेश करने के लिए। जी तो लिसनर्स, हम बात कर रहे थे कि इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिए थे और अब बारी आती है हमारी रेसिपी की जानिब आगे बढ़ने की। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चूंकि अभी टाइम पीरियड थोड़ा सा शॉर्ट है और एक अदद कमर्शियल ब्रेक भी आने वाला है, सो क्यों ना हम कमर्शियल ब्रेक के बाद इसका प्रोसीजर स्टार्ट करें ताकि सारे स्टेप्स एक साथ रहें और हम स्टेप बाय स्टेप उसको ईजीली बना लें। आई थिंक इट्स मोर लाइक अ सिंपल देन कि हम एक स्टेप पहले और बाकी के स्टेप बाद में एक्सप्लेन करें। सो तब तक के लिए हम बात करते हैं नेचर के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल के इस दौर में इट्स 2026, सो अगर देखा जाए तो बहुत सारे सर्वेज ये कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्रियल साइड को इंक्रीज़ किया है, वैसे वैसे इंसान का रुझान और ध्यान नेचर की तरफ से कम होता जा रहा है, जो कि एक तरह से अच्छा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आज के लिए तो हमारे पास इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन चूंकि जैसे हम आगे फ्यूचर में जाएंगे और हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी तो ज़रूरत होगी रिसोर्सेज की, लेकिन उनके पास वो सभी रिसोर्सेज मौजूद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम आज इंडस्ट्रियल साइड को इंक्रीज़ कर रहे हैं और नेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। सो आज के लिए आप सभी के साथ मेरा इतना सा मैसेज है कि आप नेचर की तरफ ध्यान दें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी अच्छा ऑक्सीजन मिले जिस तरह से आज हमें मिल रहा है। सो इस खूबसूरत सी बात के साथ चलते हैं आगे बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट सैनब फातिमा। आप सबको वेलकम करती हूँ द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM में। जी तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मजेदार चटपटी लज्जानिया बनाने की, यानी कि किस तरह से हम सिंपली बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज करके घर में बना सकते हैं वही रेस्टोरेंट स्टाइल फ्यूजनल लज्जानिया, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल इजी सा और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलिशियस। सो इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिए थे एंड आई थिंक सो मेरी तमाम तर लवली डिवाज ने वो इंग्रेडिएंट्स नो डाउन कर लिए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब के किस तरह से हम बनाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उस पे हम कुकिंग ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे एंड देन हम उसमें शामिल करेंगे प्याज एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे आपने तब तक पकाना है कि जो प्याज का कलर है वो चेंज हो जाए, यानी कि हल्का सा लाइट पिंक हो जाए। जैसे ही हमारा प्याज अच्छे से पक जाएगा सो इट्स टाइम कि हम इसमें शामिल करेंगे अपना बोनलेस चिकन या फिर कीमा, जो भी आपने डिसाइड किया है, जो आपने चूज किया है या फिर जो आपके पास मौजूद है आप वो शामिल कर देंगे और इसे मजीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब आ रही आती है इसमें शामिल करने की टोमेटो की प्यूरी, केचप, ऑरिगेनो, लाल मिर्च, नमक, इन सभी स्पाइसेस को हम शामिल करेंगे, इनको अच्छी तरह से पकाएंगे और हम इसे तब तक पकाएंगे कि जब तक हमारा कीमा बिल्कुल अच्छे से गल जाए, हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए, ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो कि वो ओवरऑल एक लुक अच्छी ना आए बल्कि इतना पक जाए कि खाने लायक हो। यानी हम इसे तब तक पकाएंगे कि जब तक ये अच्छी तरह से गल जाए और जो हमारा बैटर है या फिर हमारी सॉस है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। सो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि नेक्स्ट प्रोसीजर की कि किस तरह से हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। सो सिंपली हम एक पैन में बटर ले लेंगे, उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे, फिर हम उसमें शामिल करेंगे अपना मैदा यानी कि फ्लोर। इसको हम डालने के बाद अच्छी तरह से कुक करेंगे, इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह से हम उसे भून लें। अब इसी तरह हम चम्मच को मूव करते हुए साथ साथ थोड़ा थोड़ा मिल्क इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ ही साथ अपने चमचे को हिलाते जाएंगे ताकि जो हमारी सॉस है वो बिल्कुल स्मूथ हो, उसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियां ना बने। इसी तरह से चम्मच हिलाते हिलाते जब हमें ये फील होगा कि जो हमारी सॉस है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, यानी कि बैटर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, तो हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, साथ ही साथ काली मिर्च पाउडर और अपने चूल्हे को बंद कर देंगे, यानी कि इट्स टाइम, इट्स द मोमेंट कि हमारी व्हाइट सॉस हो गई है तैयार। सो सबसे पहले हमने चिकन की फिलिंग रेडी कर ली, सेकेंडली हमने व्हाइट सॉस रेडी कर ली, यानी कि अब बारी आती है हमारी इस रेसिपी को कम्प्लीट करने की, यानी कि अब हम बढ़ेंगे फाइनल स्टेप की जानिब। इस फाइनल स्टेप में हम चीज़ों को असेंबल करेंगे और अपने लज़ानिया को एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी और ब्यूटीफुल सी शक्ल देंगे।

तो लिसनर्स, इस वक्त वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो आप म्यूजिक को काफी एंजॉय कर रहे होंगे, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन आगे बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए।

वेल लिसनर्स, इट्स अ लिटिल प्रैंक फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी सोच रहे होंगे कि कमर्शियल ब्रेक तो नहीं आया. बेसिकली सो इट्स अ ब्रेक फ्रॉम म्यूजिक टू बातचीत, यानी कि अब हम दोबारा से गपशप का सिलसिला स्टार्ट करेंगे क्योंकि म्यूजिक हो चुका है खत्म. तो हम बात कर रहे थे लज़ानिया की, फाइनली अब हम उसको असेंबल करने जा रहे हैं. सिंपली आपने क्या कर लेना है, एक बेकिंग डिश आप कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है. सिंपली उसमें सबसे पहले आपने व्हाइट सॉस की एक लेयर लगा देनी है, फिर उसके ऊपर से हम लज़ानिया शीट्स को पेयर अप कर देंगे एंड देन फिर हम उसमें ऐड करेंगे चिकन फिलिंग और फिर उसके ऊपर अगेन व्हाइट सॉस की एक लेयर और लास्ट में हम उसके ऊपर चीज डाल देंगे. सो इस तरह से हम इसे माइक्रोवेव ओवन में 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रख देंगे और 5 से 6 मिनट में आपका मजेदार सच चीजी लज़ानिया हो जाएगा तैयार. आई होप सो आपको ये रेसिपी काफी अच्छी लगेगी एंड हमने पूरी कोशिश की है कि इसको हम बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाएं ताकि

चावल, इन सभी की बात करते हैं तो क्यों ना हमें अपने डेली बेसिस पर अपने लंच मील में कुछ डिफिकल्ट, कुछ नया, कुछ फ्यूजनल भी ट्राई करना चाहिए। एंड आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ को इसलिए भी ट्राई नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि काफ़ी मुश्किल है, डिफिकल्ट होगा बनाना, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे सो आप ज़रूर कहेंगे कि ये बहुत सिंपल है और इसे बनाना भी उतना आसान है।

जी तो लिसनर्स आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानेब। तो माय लवली डिवर्स, जैसा कि अब है जून का महीना स्टार्ट, यानी कि जून एक मूवमेंट होता है, एक एलिमेंट होता है गर्मी के स्टार्टअप का, यानी कि जून में हमें पता चल जाता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियां आगे बढ़ने वाली हैं। सो हम

तो जैसे कि हम सीजन के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे कि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह की रेसिपीज ट्राई की जाती हैं, तो जैसे कि अब है जून और यानी कि गर्मी, गर्मी होती है फेमस दो ही चीज़ों के हवाले से, एक तो हीट वेव्स की वजह से और दूसरी मैंगोज़ की वजह से। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा क्रीमी मैंगो डिलाइट। ये इतनी मज़ेदार है, इतनी सिंपल सी रेसिपी है, बट ट्रस्ट मी जब आप कुछ चटपटा कुछ स्पाइसी खाते हो तो फिर दिल करता है कि कुछ स्वीट कुछ टैंगी और कुछ ठंडा रिफ्रेशिंग खाने का। सो ये मज़ेदार सा क्रीमी मैंगो डिलाइट आपकी इस क्रेविंग को फुलफिल कर देगा, ना सिर्फ फुलफिल कर देगा बल्कि आपको मूड को भी इन्हेंस कर देगा। चलिए आइए मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सा क्रीमी मैंगो डिलाइट। तो इसके इंग्रेडिएंट आप सभी से शेयर करती हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अपनी नोटबुक रेडी रखिए, क्योंकि आपको बताने जा रही हूँ ऐसे मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके मूड को कर देंगे मज़ीद इन्हेंस और बूस्ट।

सो बेसिकली इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश मैंगोज 3 अदद, ठीक है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों मैंगोज को ब्लेंडर में डालकर उनकी मजेदार सी फ्रेश प्यूरी बना लेनी है और एक मैंगो को चॉप करके कट करके रख देना है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्रेश व्हिपिंग क्रीम, जिसे हम 1 फुल कप और 1/2 कप यूज करेंगे, जो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी रेसिपी में यूज होगा कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप। अगर कंडेंस्ड मिल्क आपके पास ना मौजूद हो तो आप 4 to 5 tablespoons आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली योर चॉइस। आपको अपने कन्वीनियंस के अंदर रहते रहते जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं आप वो यूज कर लें। इसके साथ ही हमें चाहिए इस मजेदार सी शानदार सी रेसिपी के लिए मैरी बिस्किट्स का एक पैकेट। अगर ये बिस्किट अवेलेबल नहीं है सो आप सुपरमार्केट से कोई और इस तरह के बिस्किट्स भी ले सकते हैं, बिस्कॉफ ले सकते हैं, कैंडी ले सकते हैं, जो कि क्रंची हो और थोड़ा सा उनका टेस्ट ब्राउन शुगर वाला हो। अब बारी आती है हमारे लास्ट और फाइनल इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि बटर 2 टेबलस्पून जो कि बिल्कुल मेल्टेड हो, और साथ ही साथ पिस्ता और बादाम 2 टेबलस्पून जो कि हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। हम इनको अच्छी तरह से क्रश करके रख लेंगे। ये तो थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो हमारी इस रेसिपी में यूज होंगे। आई होप आप सबने इन इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रेसिपी की जानेब कि किस तरह से हम इस मजेदार से डिलिशियस से मैंगो डिलाइट को बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे बिस्किट बेस, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम बिस्किट्स को

0: एक अच्छे से बैग में डालकर उनको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल क्रश फॉर्म में हो। यानी कि हमने बिस्किट को अच्छे से क्रश कर लेना है, लेकिन इन्हें पाउडर नहीं बनाना, बल्कि क्रंच फॉर्म में रखना है, ठीक है। अब हम इन बिस्किट्स को, जिसे हम सिंपल सादा उर्दू जुबान में चूरा कहते हैं, ठीक है, इन बिस्किट्स के चूरे को हम 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब जिस ग्लास या फिर जिस डिश में हम इस डेजर्ट को बनाने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम बिस्किट की एक प्यारी सी प्योर लेयर लगा देंगे और फिर चम्मच से हल्का सा इसे दबाकर सेट कर लेंगे, ताकि ओवरऑल दिखने में भी प्रेजेंटेबल दिखे और टेस्ट में तो वैसे ही ये लाजवाब है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि क्रिएशन ऑफ वेलवेट क्रीम की, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, ठीक है, उसमें अच्छे से ठंडी फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आप व्हिपिंग क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपने उसे बीटर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्लफी कर लेना है, ठीक है। अब इस क्रीम में आपने कंडेंस्ड मिल्क या फिर आप पिसी हुई चीनी, जो कि मैंने दोनों इंग्रेडिएंट आपको बता दिए थे कि आपके पास जो हो आप वो यूज कर ले, उसे शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब इस मीठी क्रीम में 4 से 5 क्रीम के चम्मच हम अलग से निकाल कर रख देंगे, ठीक है, जिसे हम लास्ट में यूज करेंगे। किसके लिए? डेकोरेशन के लिए, ताकि हम अपने डेजर्ट को अच्छा सा प्यारा सा डेकोरेट कर सके, ठीक है। और अब जो आम की प्यूरी हमने बनाई थी वो डालकर हल्का सा इन सब को मिक्स कर लेंगे। अब आपका मिक्सचर बिल्कुल एकदम तैयार है, एकदम रेडी है और एकदम येलो दिख रहा है, ठीक है। अब फाइनल स्टेप किस चीज का है? लेयरिंग का। तो लेयरिंग करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है शो में ऑफिशियली फाइनल ब्रेक का। आगे तो मैंने आपसे एक छोटा सा प्रैंक किया था, लेकिन अब हम वाकई जा रहे हैं ब्रेक की जानिब। सो चलते हैं, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग
5: ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सबको वेलकम करती हूँ द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM में। जी तो लिसनर्स, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम मज़ेदार क्रीमी मैंगो डिलाइट बिल्कुल सिंपली बना सकते हैं। सो हमारा फाइनल स्टेप रह गया था लेयरिंग। अब हमने किस तरह से लेयर अप करना है कि सबसे पहले हम अपने उस मैंगो प्यूरी क्रीम को ऐड कर देंगे एंड देन उसके ऊपर हम जितने भी हमने वो मैंगोस कट करके रखे थे उनको शामिल करेंगे और क्रंच के लिए उन बिस्किट्स को और बादाम और पिस्ता को गार्निशिंग के लिए यूज कर लेंगे। सो इस तरह से हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा 01157100971 पर जाकर। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जी तो लिसनर्स, अब हम शामिल करते हैं शो में एक मजेदार सा म्यूजिकल ट्रैक। सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक और ट्रैक से उस पर फिर गुफ्तगू को जारी करेंगे।

वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सभी ने इस मजेदार से म्यूजिक सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। जी तो लिसनर्स, जैसा कि हमेशा की तरह हर एक दिन स्टार्ट होता है एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी से, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक वाइब से, और फिर आफ्टर ऑल एंड हो जाता है एक निहायत ही स्मूथ, सूथिंग और कॉम वाइब के साथ। तो कुछ इसी तरह से अब हमारा शो भी अपने अहतमाम के करीब पहुंच चुका है और अब वक्त हुआ है शो को अलविदा कहने का। जी तो लिसनर्स, जाते जाते आप सभी से एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज एक न्यू चीज स्टार्टअप हुई है। सो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि कहा जाता है कि दुनिया में डिफरेंट तरह के रिलीजियन हैं और एज अ ह्यूमैनिटी हमें सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से लेना चाहिए, चाहे कोई मुस्लिम है या फिर हिंदू है या फिर है बंगाली। सो सबके अपने अपने ट्रेडिशन होते हैं, सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। सो बीइंग अ ह्यूमैनिटी हमें उन सबकी रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो बेसिकली आज स्टार्ट हुआ है मुहर्रमुल हराम, यानी कि अगर हम देखें तो मुस्लिम न्यू ईयर का स्टार्टअप आज से होने जा रहा है। और आप सभी को मालूम होगा, जितनी भी एशियन कम्युनिटी है जो कि इस वक्त जो सुन रही है, आप सब इसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मुहर्रम में बेसिकली एक ऐसा इंसिडेंट रोनुमा हुआ है जो कि तमाम तर इंसानियत के लिए, ना सिर्फ इंसानियत के लिए बल्कि मुस्लिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। So basically, you don't need to be a Muslim to understand the tragedy of Karbala. The battle of Karbala was for all the humanity. It was a war of 72 that left a lesson from billions. So, कोशिश करिए कि अब आने वाले जो चंद दिन हैं इनको as a respect. I know कि अगर हम दूसरी community से ताल्लुक रखते हैं, हमारा religion दूसरा है, लेकिन फिर भी हमें एज अ रिस्पेक्ट अपने नेबर की, अपनी कम्युनिटी की और उन लोगों की ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारे आसपास रहते हैं या जिनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से कनेक्टेड है। सो कोशिश करिए कि इस मुहर्रमुल हराम को अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, बल्कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करें, अच्छे कामों में सर्व करें और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आई नो हम तो यहाँ यूके में रहते हैं लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक वार चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अबाउट शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। सो इन कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा बाहर आए और असल मायने में मुहर्रमुल हराम को, इसके तकद्दस को समझें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि करबला में क्या इंसिडेंट रोनुमा हुआ था और हमें उस इंसिडेंट से क्या एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। सो मैंने सोचा कि सभी लिसनर्स के साथ जाते जाते एक खूबसूरत, एक अच्छी, एक मीनिंगफुल बात शेयर करती जाऊं। सो आज से मैं और आप अहद करते हैं कि अगले आने वाले 10 दिन हम इस चीज़ का एहतराम करेंगे, मुहर्रमुल हराम का एहतराम करेंगे और करबला में रोनमा होने वाले उस इवेंट का। सो लिसनर्स, इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आई नो जाने का तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि जाना पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी रुक नहीं सकती, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए यू हैव टू नीड टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप। सो आपका दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपका दिन, आपकी सुबह, आपकी ज़िंदगी अभी बाकी है, शो ख़त्म होने जा रहा है। सो कोशिश करिए इस दिन को, इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए, यादगार बनाइए अपनों के साथ, प्यारों के साथ और हर तरह के रिलीजन का रिस्पेक्ट करके। सो इसी के साथ मैं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा आप सभी से इजाज़त मांगती हूँ। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह एक न्यू डे के साथ, एक न्यू एम्बिशन के साथ और एक न्यू कोट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने से जुड़े उन सभी लोगों का ख्याल रखिए जिनकी ज़िंदगी आपसे कनेक्टेड है। जाते जाते एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और आज की रेसिपीज़ के हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और इस हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट भी मुझसे शेयर कीजिएगा।
और radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट. सो इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं. अपने दिन को खूबसूरत बनाइए, यादगार बनाइए और जाते जाते इस खूबसूरत से कलाम को सुनते जाइए.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

तो सो सॉरी, मैं अपना इंटरव्यू करवाना थोड़ा सा लेट होगी क्योंकि एक छोटा सा काम याद आ गया था, वो करना चाहिए। बट काम आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए वैसे मुझे। सो प्रोग्राम आप सुने हैं लंच बॉक्स, नाम से आवाज़ आप सुने हैं सलूराज की। सलूराज के साथ आपके साथ रहता है ठीक ठीक 12 बजे से 2 बजे तक। और बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है दिन? दिन तो अच्छे से ही गुजरा होगा क्योंकि हम आपके साथ हाजिर हैं। आपका दिन बुरा गुजरे ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन मीडिया, और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर एंटरटेनमेंट। प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बड़ा ही आसान है, 01157100971। इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा मुझे गूगल पर सर्च कर सकते हैं diffuser.co.uk, क्योंकि आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारा या फिर किसी भी तरह के प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आज किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पर करता है, सवाल वो आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से आप हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। वे प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं सो आप पहुंचा सकते हैं। नंबर आपको नोट करवा चुकी हूँ, घर बैठे क्या वतीने मुझे सुन रही है, बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रही है। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं बी सेफ बी केयरफुल, और जो लोग ऑफिस की तरफ निकल चुके हैं और जाते साथ दिन थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो कोई बात नहीं भाई, प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं, हम आपका साथ देते हैं ठीक ठीक 2 घंटे का, ताकि आपके मूड को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। मैंने सोचा कि क्यों ना बैकग्राउंड बीजीएम को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ताकि आप मेरी आवाज़ भी सुनते रहें और बीजीएम को भी जो है वो इन्जॉय करते रहें। हदीका यानी की बड़ी खूबसूरत कवाली है, और मैं खुद इस कवाली को बहुत ज्यादा सुना है मैंने, और मैंने सोचा क्यों ना इसको शामिल कर देते हैं और आपके साथ गपशप स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक छोटा सा टॉपिक शामिल किया जाता है, उस टॉपिक के वास्ते जो है डिस्कस स्टार्ट की जाती है। लेकिन टॉपिक अगर आप हमें बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, लेकिन अगर मैं अपने पसंद का भी कोई टॉपिक प्रोग्राम में शामिल कर दूं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है वैसे, और मैं हमेशा अपनी मर्जी का ही टॉपिक शामिल करती हूँ। लेकिन अपने लिसनर्स का इंतज़ार करूँगी, आपका इंतज़ार करूँगी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, जैसे ही आपका मैसेज मुझ तक पहुँचेगा तो मैं उस बात को प्रोग्राम में शामिल कर दूँगी। कोई खूबसूरत सा मैसेज किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहें, या फिर कोई ट्रैक आप किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहें, सब वो भी कर सकते हैं, या फिर अपने मूड को ही सही करने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सबसे पहले रखें, अपनी अहमियत को खुद जानेंगे तभी दुनिया वाले आपको जो है पहचानेंगे। वह प्रोग्राम में जो है वो गपशप आपके साथ चलते रहेगी, एक छोटी सी फरमाइश को शामिल करेंगे प्रोग्राम में फिर उसके बाद रहेगी आपसे मुलाकात, शामिल होकर ऐसे ट्रैक शामिल करवाइएगा जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सुरराज की। सुरराज के साथ आपके साथ रहेगा करीब करीब दो घंटे का प्रोग्राम। एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक शामिल किया था, ट्रैक उस पर रही आपसे मुलाकात। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रैक पसंद भी आया होगा। लेकिन उसी के साथ साथ प्रोग्राम में टॉपिक की बात की जाए तो मेरे पास काफ़ी जो है ना मजबूत के टॉपिक है। मतलब मैंने आज सोचा कि मतलब किस तरह के मतलब टॉपिक रखने चाहिए। एक मेरे पास टॉपिक है, मतलब मैं आपको टॉपिक बताऊंगी और आप मुझे डिसाइड करके बताना कि आज किस हवाले से जो है ना डिस्कस हम करें। सबसे पहला टॉपिक है कि खुद पर काम करना क्यों ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक है कि वक्त की कदर। और तीसरा टॉपिक है खामोशी की ताकत। और उसी के साथ साथ चौथा टॉपिक जो है वो आज का इंसान और तन्हाई। और सबसे खास टॉपिक जो मुझे इसमें लग रहा है, बट मुझे ये लग रहा है कि छोटी सोच से बड़ी मंजिल तक। वाओ, मतलब इस बात में मुझे थोड़ा सा मतलब ना भारी भारी फील हो रहा है। बट बड़ी कामयाबी हमेशा छोटी छोटी कोशिशों से ही शुरू होती है। सो कोशिश को स्टार्ट कर देना चाहिए, किसी तरह की भी हो, किसी की ज़िंदगी में एंट्री मारनी हो या फिर किसी भी तरह की भाई किसी जॉब की तरफ जाना हो या फिर खाना वगैरह खाना हो, एंट्री सबसे पहले हमें खुद ही मारनी पड़ेगी। सुबह खुद भर काम करने की अगर थोड़ी सी मिसाल दी जाए तो कुछ कामयाब लोगों की ये निशानी है कि कामयाब लोग अपनी कमाइयों को जो है वो पहचान कर रोज़ बेहतर बनने की और कोशिश करते हैं। और जिनको पता हो कि उन्होंने कामयाब किस तरह होना है, मेरे ख्याल में उनको इनका ज़्यादा इल्म होगा। वक्त की कदर, तो जो लोग वक्त की इज्जत करते हैं, वक्त भी उन्हें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। दैट्स वेरी नाइस। बात की जाए तो खामोशी की ताकत। कभी कभी इंसान की खामोशी उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। अल्फाज से ज़्यादा जो है वो आपकी खामोशी बोलती है। और मेरे ख्याल में मैं इस बात पे एग्री भी आऊँ कि इंसान को खामोशी रहना चाहिए। आज के इंसान की बात की जाए तो लोगों के ड्रामे जो हैं वो ख़त्म होने को ही नहीं आते। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपने ड्रामा की वजह से बस आते हैं कि अगला इंसान हमारी तरफ रजू हो, हमारी तरफ तवज्जो करे। ना भाई ना, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर अगर किसी को अपनी तरफ कायल करना है काम, तो मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात तो नहीं है ये। अपनी खूबियों समेत, अपनी खामियों समेत उस इंसान को अपनी तरफ खींचना, ये आपका काम नहीं है। अगला इंसान आपकी खूबियों खामियों समेत आपको कबूल करेगा। बड़ी कामयाबी हमेशा छोटी छोटी कोशिशों से मिलती है। दैट्स वेरी ग्रेट। और ये बात समझने में हम लोग बहुत देर कर देते हैं। जब तक हम इस बात को समझते हैं तब तक हमारे पास टाइम नहीं रहता। बट आज वक्त आपका है तो इस वक्त को अपने हाथ में ही रखिए। अगर वक्त हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दूसरों की खुशी की खातिर उन्हें छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यार, आप कामयाबी की तरफ जाएं। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कामयाबी के पीछे एक इंसान को छोड़ देते हैं। नो, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। हो सकता है कि वक्त आपको आजमा रहा हो, वक्त आपको चेक कर रहा होगा कि आप अगर तो आप मतलब वक्त के लिए आप उस इंसान को छोड़ सकते हैं, उस अच्छे वक्त के लिए जो आप अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाह रहे हैं। एक इंसान को आप छोड़ें तो मुझे नहीं लगता कि वक्त आपके साथ लॉयल रहेगा, क्योंकि वक्त एक गोल पहिए की तरह जो घूमता रहता है। एक दिन ऊपर है तो नीचे भी ज़रूर आएगा।

सवाल उसी के साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। मैंने आपके सामने तकरीबन मेरे ख्याल से 5 टॉपिक रख दिए हैं, और इसमें से जो आप सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह का भी आप सिलेक्ट करेंगे, हम उसके हवाले से आके डिस्कस स्टार्ट कर देंगे। चोरी चोरी किसी की आवाज़ सुनना ये अच्छी बात नहीं होती, और मेरे ख्याल में अगर आप किसी को सुनना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर लें।

¿Vale? कोशिश कीजिएगा कि दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें, अपनी खुशी को बेशक साइड पे कर दें लेकिन दूसरे की खुशी पहल पे रखें। जब आप दूसरों का भला सोचेंगे, दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो आपके लिए भी वो अच्छे से अच्छे में मतलब होगी। जब कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो सबसे पहले आपके हक में कबूल होती है, तो कोशिश करें कि उन प्यारों को याद रखें, उन लोगों को याद रखें जिनकी दुआओं की ज़रूरत आप जिनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। प्रोग्राम में एक छोटी सी फरमाइश भी हमारे पास मौजूद थी लेकिन उसको अब शामिल नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम में हायल होने लगी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे रहेगी मुलाकात, सो डोंट गो एनीवे, रहिएगा मेरे साथ साथ, ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 FM को एंड डैप को। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं जुलराज की। अब मुझे ना प्रोग्राम में एक ट्रैक शामिल करने की फरमाइश आई थी, लेकिन प्रोग्राम एक मशूबे ख्याल हो चुकी थी। मुझे मैसेज किया गया मेरे पर्सनल नंबर पर कि यार सलोराज आपकी आवाज़ भुजी भुजी क्यों है। नहीं, मेरी आवाज़ कहाँ भुजी है। तो बेक आपका ही तो टाइम होता है, मतलब बेक आपका ही तो साथ होता है जिसके साथ में आके मतलब अच्छे से बात कर लेती हूँ। मेरी बक बक आपके अलावा और कोई भी नहीं सुन सकता। सो इस चीज़ को दिमाग में मत लगेगा कि सलोराज है वो भुजी भुजी से। ये नो नो नो, अभी हम जो है ना वो इंटरटेनमेंट का धमाका उठाएंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेके आती हूँ इन्फॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट आपके लिए आती हूँ। अगर इसी टाइम में मैं अपने दुख लेके बैठ जाऊँ तो यार आपको इंटरटेन कौन करेगा। दो घंटे के लिए ना मुझे अपने दुख भूलने पड़ते हैं, लेकिन मैं उनको भुला नहीं पाती। क्यों नहीं भुला पाती? क्योंकि प्रोग्राम में जब ट्रैक शामिल करने की बात आ जाए ना, तो फिर कुछ ट्रैक ऐसे शामिल करने पड़ जाते हैं जिनको सुनने के बाद जो है ना सेंटिमेंटल वाला माहौल बन जाता है। क्योंकि मैं अक्सर इस बात पर डिस्कस करती हूँ कि जब हम प्रोग्राम में कोई ट्रैक शामिल करते हैं तो वो एक तो हमें कुछ ना कुछ सिखाता भी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें याद दिला देता है जो इंसान याद भी नहीं करना चाहता। आपका दिमाग जो है ना वो पकड़ पकड़ के ऐसी बातें लेके आएगा जिससे आपको तकलीफ होगी। सो अपने दिमाग को जो है वो थोड़ा सा काबू में रखें। मुझे भी खैर अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए। दिमाग जो है ना वो पकड़ पकड़ के ऐसी बातें ले आता है दिमाग में जो इंसान को दुखी कर देती हैं। लेकिन हमने दुखी नहीं होना, जितना दुखी होना है वो हम अपने टाइम के बाद हो जाएंगे। आपके साथ को जब छोड़ के जाएंगे, आपको जब छोड़ के जाएंगे तब हम जो है ना उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेंगे। क्योंकि ये वो गाड़ी है, ये वो हमारी गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं चलती बल्कि वक्त से चलती है। और वक्त जो है हमारे दरमियान काफ़ी कम होता है, मतलब दो घंटे का टाइम मुझे तो बहुत कम लगता है। मतलब जब मेरी गपशप आपसे काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर या तो ट्रैक की फरमाइश आ जाती है या फिर ग्रामर को सुबह ख्याल हो जाती है। और जब ज़्यादातर लगाओ पक्का वाला हो जाए ना, तो फिर टाइम ही ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को आप खाने लगो और जब आप उसको खाना शुरू कर दो, लेकिन जब मज़ा आने लगता है तब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है मुझे मैसेज किया गया कि आज का जो टॉपिक रखना चाहिए, आपने 5 टॉपिक बताए थे, लेकिन आप आज का टॉपिक ये रखेंगे, कोशिश यही करें कि आप अपनी तरफ से अच्छे अच्छे टॉपिक हमें बताती हैं, लेकिन आप इस टॉपिक को शामिल करें जो आपने तीसरे नंबर पर बताया था। आई डोंट नो मैंने तीसरे नंबर पर कौन सा बताया था। मेरे ख्याल में खामोशी की ताकत की बात की थी, एक तीसरा जो हमारा टॉपिक था खामोशी की ताकत। सो हम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे और आपके साथ गपशप भी स्टार्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचाएंगे सो मैं ज़रूर उसको प्रोग्राम में शामिल करूंगी। सुबह खामोशी की बात की जाए तो खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसान की सोच समझ और पर्सनैलिटी को जो है ना मजबूत बनाती है। अक्सर हम समझते हैं कि ज़्यादा बोलना ही जो है वो अपनी बात मनवाने के तरीके हैं। नो, कभी कभी आप खामोश रह के भी वो कुछ कर जाते हैं जो इंसान कभी भी महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी एक पुरसकून खामोशी बहुत गहरा असर छोड़ देती है, और आई डोंट नो जब वो गहरा असर छोड़ देती है और जिस पे छोड़ देती है वो उस चीज़ को फील करता भी है या नहीं, ये अगले बंदे पे डिपेंड करता है। हकूक़ुल इबाद का मामला जो है ना वो बहुत सख्त है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। किसी का साथ नहीं छोड़े, बीच रास्ते में छोड़ने वाले जो है ना वो लोग मुझे नहीं पसंद, वो अब किसी भी तरह के हों। मैं एक ही बंदे को पॉइंट नहीं करती, बट पता नहीं मैंने ये लाइन कहीं पढ़ी थी, आई डोंट नो क्या मैं इसको सही से तरतीब से आप तक पहुंचा पाऊंगी, बट कुछ इस तरह से थी कि उसने मुझे बोला था कि अब हम क्यामत में ही क्यामत आएगी तभी हम अलग होंगे, और फिर चंद ही रोज़ बाद क्यामत आ गई। अब वो क्यामत उनकी तरफ से लाई गई थी, मतलब वो वाली क्यामत नहीं थी। जब एक इंसान का आपसे दिल भर जाता है ना तो वो क्यामत जो है ना खुद बहुत बर्पा हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंसान का आपसे दिल भरे तो आपको छोड़ दे। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपको आपकी खुशी के लिए भी छोड़ें। ना ना ना, जिनको आपकी खुशी का ख्याल होगा वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मुझे तो इन बातों पे अब ज़रा भी यकीन नहीं रहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मतलब यार सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कहने के लिए तो इंसान बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन जब वो कहते हैं ना भाई प्यार इंसान को मिल जाता है,
और इंसान कर भी लेता है, लेकिन उसको संभाल के रखना जो है ना वो थोड़ी मुश्किल चीज़ होती है, और वो हर कोई नहीं कर सकता। खामोश इंसान अपनी अपने आसपास की हालत को बेहतर समझ सकता है, वो जान सकता है कि अगले इंसान के दिल पे क्या बीती है। सो मुझे उस टाइम पे उस जगह पे कहाँ कैसे रहना चाहिए। वो दूसरों की बातें सुनता है, चीज़ों को देखता है, मद्देनजर रखता है, फिर सोच समझ कर जो है ना फैसला करता है। और ऐसे सोच समझ कर फैसला करने वाले लोग जो है ना वो ज़िंदगी में मेरे पॉइंट्स जो है मतलब मुझे जहाँ तक लगता है सोच समझ के काम करने वालों से, सोच समझ के काम को आगे लेकर चलने वालों वाले जो है ना वही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि अक्लमंद जो है ना वो अक्लमंद इंसान पहले सुनता है फिर बोलता है। आप भी पहले सुने फिर बोले। बहुत से रिश्ते होते हैं जिनमें इंसान को सुनना ही पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता। बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। खामोशी जो है ना वो वहाँ पर बहुत जो है ना वो अहम है। और जिस रिश्ते को आप लेकर चलना चाहते हैं आपको वहाँ पर बहुत सी जगह पर खामोश होना पड़ेगा जहाँ पर आपका दिल दुखे। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बड़े बड़े मसले होते रहते हैं, छोटे छोटे मसले होते हैं। वो कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। लेकिन किसी के सब्र को इतना मत आजमाएं कि इंसान जो है ना वो आपको ना तो मतलब बददुआ तो खैर देनी ही नहीं चाहिए। मैं जहाँ तक इस चीज़ को लेकर चलती हूँ ना कि जब एक इंसान को किसी से प्यार हो जाए ना तो फिर नफरत नहीं होती। मतलब मैंने भी ये चीज़ किसी से पूछी थी कि अगर आप मतलब मैंने पूछा था कि आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, तो मुझे आगे से जवाब मिला था कि नहीं, अगर तो मुझे एक शख्स से प्यार हो गया तो मैं उसे कभी नफरत नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। एक एक टाइम में एक ही चीज़ होती है, जब आप किसी से नफरत कर प्यार करते हैं तो आप किसी से उस इंसान से नफरत नहीं कर पाते। बस किसी के सब्र को इतना मत आजमाएं कि अगला इंसान जो है ना वो आपको तो कुछ कह ना सके लेकिन अपने रब की बरगाह में आपकी शिकायत करे। इस चीज़ का ख्याल रखें, दूसरों के आंसू की वजह मत बने। और इसी के साथ साथ इतना भी कहना था, क्या कहना था मैंने, बल्कि बात को करते करते भूल जाती हूँ, भुलक्कड़ सी हो गई मुझे ऐसा फील होता है।

लेकिन बात कर रहे थे कि किसी के सब्र को ना आजमाएं, क्योंकि अगर महबूब को अगर सब्र आ गया ना, तो आपकी औकात क्या ही रह जाएगी। अगर कोई आपसे सही से बात करता है तो उसको सही से ट्रीट करें, किसी को नज़रअंदाज मत करें। बेवफा इंसान का जो मैं बेवफा इंसान की जो एक सज़ा है ना, वो यही है कि उसको नज़रअंदाज किया जाए। नज़रअंदाज किया जाएगा तो वो खुद ब खुद जो है ना, उसको एहसास होगा। बट वही बात आ गई कि होने वालों की होता है। वैसे तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बातें थी कि भाई मोहब्बतों में इल्हाम होता है, पता चल जाता है कि इंसान तकलीफ में कुछ भी नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होता। जब इंसान बहुत ज़्यादा हद से दर्द से गुजर जाता है ना, तो वो हंसने लग जाता है। और मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोशिश करें कि आपके लिए ये दुख जो है ना, वो सबसे छोटा होना चाहिए। कोशिश करें, क्योंकि अभी जो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी का दिल आकर से ना दुखे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर दिया है, वो कहते हैं ना कि भाई इंसान की माफ़ी दुनिया में ही मिल सकती है इंसान को। अगर आपने किसी इंसान के साथ बुरा किया, किसी शख्स के साथ बुरा किया, किसी शख्स का दिल दुखाया है, तो उसकी माफ़ी आपको दुनिया में ही उसी से मांगनी पड़ेगी। उसकी माफ़ी आपको रब नहीं दे सकता। पर कुछ लोगों को जो है ना, वो दुनिया में ही माफ़ कर देना चाहिए, ताकि हशर के मैदान में उनसे मुलाकात ना हो सके, उनसे सामना ना हो सके। बोलो जी, के साथ साथ अभी गपशप आपके साथ स्टार्ट रहेगी। फिर ग्राम में एक छोटे से ट्रैक फरमाइश करेंगे, शामिल करेंगे अपनी फरमाइश पे, क्योंकि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मज़े मज़े के ट्रैक सुनूं अपने लिए। अपने आप को हमेशा फर्स्ट फर्स्ट पे रखें। अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के काम में मसरूफ़ है ना, उसमें लगे रहें कोई भी टाइम। और तब अगर ज़िंदगी में कोई भी काम करें, अगर आपको लग रहा है कि आप उसको टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन किसी के साथ दिल मत लगाइएगा, क्योंकि आदत जो है ना, वो बड़ी गंदी चीज़ है। और वो अगर लग जाए एक दफ़ा, तो वो फिर ख़त्म हो, इंसान को ख़त्म कर देती है। जब एक इंसान अपने आंसू अंदर की तरफ गिराना शुरू कर देता है ना, तो वो अंदर से बीमार होने लग जाता है। मेरे पास इसके रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अभी जो मैंने बात की है। बट कोशिश यही करें कि दूसरों की खुशी का ख्याल रखें, दूसरों की खुशी की वजह बने, क्योंकि जन्नत सिर्फ नमाजियों को नहीं मिलनी। दिल मेरा भी थोड़ा सा उदास ही है, थोड़ा सा नहीं, वो हाफी का एक शेर भी याद आ गया उदासी से मुझे। आई थिंक कुछ इस तरह था, तुझे क्या पता मैं कितना उदास हूँ, मैं तेरी सोच से भी ज्यादा उदास हूँ। बट शेर व शायरी का जो मुझे तो बहुत शौक है, लेकिन जॉन एलिया के शेर मुझे बहुत पसंद है। जॉन एलिया की बात की जाए तो जॉन एलिया का एक शेर मुझे याद आता है, कोई जानता है क्या किसी जिन्हा को, मुझे एक शख्स से आज़ादी चाहिए। मतलब कहते हैं कि शायरी में इतना इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, बट हो जाए तो फिर वो एक अलग बात है, फिर कोई छुड़वा भी नहीं सकता उस आदत को। सवर बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का, उन नई समातों का जिन्होंने आज अभी अभी अभी हमें ट्यून किया है। बेहद शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का, शामिल होने का और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाई गया। नंबर बड़ा ही प्यारा है 01157100971। ट्रैक शामिल किया है हमने अपनी फरमाइश पे, आइए सुनते हैं इस ट्रैक को। रहेगी मुलाकात आपसे इस ट्रैक के उस पार, सो डोंट गो एनीवे, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच ब्लॉक लाउंज, हमेशा की तरह मेरा आपका साथ आएगा ठीक ठीक 2 बजे तक। सुन प्रोग्राम में एक छोटी फरमाइश को शामिल किया था अपनी फरमाइश पे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। मेरी फरमाइश जो है ना वो आजकल ऐसी वैसी हुई है और मेरे ख्याल में अब रहनी भी ऐसी है, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है। बीजीएम को यही रहने देते हैं और फिर उसके बाद फिर एक और फरमाइश को पूरा करेंगे आपके अपने दरमियान। लेकिन बट बात हम कर रहे थे अपने टॉपिक के वास्ते डिस्कस स्टार्ट करते थे, प्रोग्राम में जो है एक और छोटी सी बात को शामिल करवाया गया। बट उस बात को शामिल करेंगे, ज़रूर करेंगे। बट अभी जो हम खामोशी की ताकत के बारे में बात कर रहे थे सो इस पर बात कर लेते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखूँगी, अपनी एक पर्सनल राय देना चाहती हूँ आपको कि किसी इंसान पर अंधा यकीन ना करें, क्योंकि फिर अगला इंसान आपको बिल्कुल अंधा समझने लग जाता है। सो यकीन करने की ज़रूरत ही नहीं है भैया, आप अपने काम में आए हैं, काम करें और जाएं बस। और इससे ज़्यादा भैया आपके किसी के साथ किसी तरह का भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। मैंने सुना था कि दोस्तियाँ बड़ी देर तक चलती हैं, मतलब प्यार से अच्छी जो है ना वो दोस्ती होती है, लेकिन दोस्ती भी नहीं चलती उस इंसान, मतलब मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ पहली बार हुई होगी बट मुझे तजर्बा हो गया और मुझे जो अकल भी आ गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ना अब तो अकल आनी ही आनी है, जाहिर सी बात है। जब एक दफ़ा टूट गया दिल तो टूट गया, बट हम जो है वो सरवाइव करेंगे, ज़रूर करेंगे, इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार जो है वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आप हमें भी ज़रूर मैसेज करेंगे और मुझे इस दिन का इंतज़ार भी रहेगा। लेकिन मैं फिर भी एक तरह से यही दुआ मांगती हूँ कि अगर मेरी ज़ात से कोई परेशान है, मेरी ज़ात से कोई तंग है, तो मुझे उसकी ज़िंदगी से दूर ही कर देना बेहतर है। और वैसे भी मेरी बकबक ज़्यादा देर तक कोई सुन नहीं सकता, एक आप ही हैं जो मुझे सुन लेते हैं। 2 घंटे का टाइम मैं आपके साथ स्पेंड करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि आप बोल नहीं पाते और सिर्फ सुनती, मतलब आप सिर्फ सुन सकते हैं, बोलते सिर्फ मैं हूँ। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप प्रोग्राम में कॉल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 1157100971 पे इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो और अपनी राय भी प्रोग्राम में शामिल करवाएं उन बेवफा लोगों के लिए, उन धोखेबाज लोगों के लिए जो आपको आधे रास्ते में छोड़ गए। लेकिन बेवफा कोई भी नहीं होता, वक्त की मजबूरी हो जाती है और वक्त को सिर्फ नाम दिया हुआ है कि वक्त सही नहीं है तो ये है तो वो है। बट मैंने कभी धोखा देने वाले को ये नहीं सुना कि यार ये हो गया था उस टाइम पे, ये सिचुएशन बन गई थी तो मुझे ऐसा करना पड़ गया, मतलब कोई अपनी गलती मानने को ही नहीं भाई तैयार। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बस दूसरों की खुशी का ख्याल रखें, अपनी खुशी को बेशक जो है वो बाद में कर लें। जब आप दूसरों की खुशी का पहले ख्याल रखेंगे ना तो ऊपर वाला जो है ना वो आपकी खुशी को फर्स्ट पे रखेगा। खामोशी की ताकत की बात की जाए, कुछ जगह पे खामोश रह जाना ही बेहतर होता है और खामोशी से बड़ा जवाब कोई होता नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आपकी किसी से बहस भी हो जाती है तो वहाँ पर आपको खामोश ही रह जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जुबान चलाएंगे, जवाब देंगे तो उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। मतलब खामोशी जो है ना बेस्ट है, और मेरे में ये चीज़ पहले नहीं थी बट अब ये चीज़ आ गई है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं और मैं हर चीज़ को चुप करके सुन लेती हूँ, चुप करके बर्दाश्त कर लेती हूँ, बट अगला इंसान जो है ना वो मुझे फिर यही समझने लग जाता है कि यार ये तो चुप करके सुन लेगी, इसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हर इंसान के दिल का ख्याल रखें, क्योंकि रब की ज़ात ने जो है वो इंसान का दिल बनाया। बट मैं सोचती हूँ कि इंसान का दिल अगर बनाया है तो मतलब किसी के साथ लगना नहीं चाहिए, एक रब की ज़ात ही है जिसके साथ दिल लगा हुआ, उसके अलावा किसी से दिल लगाना नहीं चाहिए। लेकिन लग जाता है, हम लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं और नुकसान, मोहब्बत वही होती है जिसमें इंसान जो है वो नुकसान उठाता है। अगर कोशिश की बात करें, खामोशी की बात करें, तो ज़िंदगी में हर इंसान को ऐसे लम्हों का सामना होता है जहाँ गुस्सा, तकलीफ़ या जज्बात जो है वो उनको हम फौरन जवाब देने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत से ऐसा मतलब हो जाता है, तासीन आ जाता है कि इंसान को चुप करके सुननी पड़ती है। और मेरे ख्याल में जब आप चुप करके सुन लेते हैं, अगले को जवाब देते हैं। हमारे माशरे में जो है ना, मतलब आजकल जो चीज़ हुई है, हम लोग तब तक सुनते हैं जब तक अगला बोल रहा है, अपने जवाब का इंतजार करते हैं कि हम पलट कर उसको जवाब दें, ये नहीं सुनते कि भाई वो समझा रहा है, उसकी बात को समझे हम। खामोशी इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और
अंदर से मजबूत बना भी देती है, और कभी कभी इंसान को जो है ना वो बिखेर भी देती है। सो मैं कहती हूँ कि मैं कभी भी जो है ना वो उस तरह से मजबूत ना बनूँ, क्योंकि एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन हम लोग जो है वो ख़त्म करके बैठ जाते हैं। बट जिसको पूरी दुनिया माना वही बता रहा है कि भाई दुनिया ख़राब है, वाओ ये वो वाला हिसाब हो गया है। जब हम कुछ देर जो है खामोश रहकर सोचते हैं तो हमें अपनी गलतियाँ, अपनी खामियाँ और अपनी जो है वो ताकत का एहसास होने लगता है, या हमें बेहतर फैसले करने पर जो है ना ये मतलब ये हमें बेहतर फैसले करने की तरफ लेके जाते हैं। जब हम सोच समझ के हर चीज़ का फैसला करते हैं सो हमें उस चीज़ का फायदा ही होता है, ना कि नुकसान। खामोशी रिश्तों को भी बेहतर बना सकती है, और कुछ रिश्तों में खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कभी कभी जो है ना पूरा जवाब देना देने के बजाय थोड़ा रुक जाना जो है ना वो गलत फहमी को कम कर देता है। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको किसी किसी भी रिलेशन में लेके किसी भी तरह की गलत फहमी है तो आप उसको फ़ौरन से दूर करें, क्योंकि ऐसी बातें जो है ना वो रिश्ते ख़राब कर देती हैं, और जब रिश्ते ख़राब हो जाए ना तो मेरे ख्याल में फिर इंसान कहीं का नहीं रहता।

0: वो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है वो एक छोटी सी फरमाइश को पूरा कर देते हैं, क्योंकि फिर प्रोग्राम में एक चुनो मुझे कुछ बेकार हो जानी है और फिर आपकी फरमाइश उधर ही आधी अधूरी रह जानी है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं फरमाइश को पूरा कर देते हैं। बट गाना जो है ना वो थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, लेकिन आपने सेंटी नहीं होना, हम इसको प्रोग्राम के लास्ट में प्ले कर देंगे। अभी हम कोई अपनी पसंद का ट्रैक प्ले कर देते हैं ताकि आपके मूड को जो है ना वो हम ख़राब ना होने दें। हमारे मूड का तो छोड़ें, अपने मूड का ख्याल रखें, हमारा तो खैर ना ही मुझे। सो आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं छोटे से ट्रैक को। इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा हमारे साथ साथ। मिलते हैं इस छोटे से प्यार से खूबसूरत से ट्रैक के पार और एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार।
1: मुझे समझ नहीं आता

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
1: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
1: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो?
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो वजा 97.1 एफएम के डैश स्टूडियो से प्रोग्राम में और रेडियो वजा के चैनल में, और उसी के साथ साथ बड़े ही मजेदार से प्रोग्राम में जहाँ पर मेरा आपका साथ आया था ठीक 2 बजे तक। सुबह प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर रहे थे और ट्रैक शामिल किया था ब्रेक से पहले, और उसी दौरान ब्रेक जो है वो घायल हो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना आपकी फरमाइश को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि आधी अधूरी फरमाइशें बीच में छोड़ के जाना मेरी आदत नहीं है। इसी तरह मुझे आधा आधा अधूरा रास्ते में किसी को आधे रास्ते में छोड़ के किसी को जाना बिना अच्छा नहीं लगता। सो मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखती हूँ, बट बहुत से लोग होंगे जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। सो आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें, किसी के दिल में वो वाला मतलब किसी के दिल में उस उम्मीद का पौधा ना लगाएं जिसको आप पानी नहीं दे सकते। सो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो मैंने सोचा कि बैकग्राउंड बीजीएम जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, कर लिया जाए या ना कर लिया जाए आप बताएं मुझे इसके मतलब बारे में, क्या करना चाहिए, चेंज या नहीं करना चाहिए।

भरोसे के साथ साथ बात कर रहे थे हम अमोशी की ताकत की. बट मुझे उसी के साथ साथ जो है ना, मैंने प्रोग्राम में आई थिंक 5 टॉपिक शामिल करवाए थे. उसी के साथ साथ मुझे एक और टॉपिक के वाले से रिक्वेस्ट आई है कि इस टॉपिक को प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए. कोई बात नहीं, हमने 1 घंटा जो है वो पहला टॉपिक स्टार्ट किया, अब दूसरे घंटे में जो है हम इस टॉपिक को लेकर चल पड़ते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है जी, कोई टेंशन की बात है ही नहीं. दूसरा टॉपिक हमारा ये था कि खुद पर काम करना क्यों जरूरी है. ये तो मेरे ख्याल से पहला टॉपिक था. खैर चलिए, कोई भी, शायद आपको बताने में मुझे मिस्टेक हो गई हो. टॉपिक है भाई कि मतलब आज की मतलब जो बात शामिल करवाई गई है कि खुद पर काम करना क्यों ज़रूरी है. इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे. ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी सोच, आदतें और मेहनत पर काम करने से भी मिलती है, से ही मिलती है, बल्कि भी नहीं. खुद पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि भाई सुबह उठे, काम किया, बस रात को खाना खाया और सो गए. नो, जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम होता है, आप उस एक्स्ट्रा टाइम में जो है ना वो एक्टिविटी करने, वो काम करने जो आपको कल को फ़ायदा दे सके. क्या कहते हैं,

क्योंकि हम लोग जो है अपना फायदा खुद ही सोच सकते हैं, कोई दूसरा तीसरा हमारा फायदा नहीं सोच सकते, या माँ बाप जो है वो बच्चे का फायदा सोच सकते हैं। इंसान जितना ही बड़ा हो जाए, माँ बाप जो है वो उस चीज का सोचते ही सोचते हैं। सो खुद पर काम करने का मतलब यह है कि इंसान अपनी खामियों के पीछे भागे, बल्कि खामियों से भागे, वो चीज़ें जो उसको पीछे की तरफ लेके जा रही हैं, अपनी गलतियों से सीखें कि जो है आपने आगे आने वाली ज़िंदगी में जो पहले गलती की थी वो गलती दोबारा नहीं करनी, हर दिन कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो लोग अपनी स्किल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा करना शुरू कर देते हैं तो वो कामयाब होते ही होते हैं। दुनिया में हर कामयाब इंसान जो है ना, इंसान ने पहले खुद को बदला है, और हर कामयाबी के पीछे जो है ना एक ठोकर जो है ना, या एक कोई ऐसा भी कोई भी मतलब हो जिससे आपको शर्मिंदगी हुई हो, जिससे आपका दिल टूटा हो, जिससे आपने डिग्रेड फील किया, वो चीज़ जो है ना ज़िंदगी में होती ही होती है एक बार कामयाब होने के लिए। खुद पर काम करना सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। जब हम अपने अंदर पॉजिटिव जो है ना तब्दीलियाँ लाते हैं तो हमारी सोच जो है, हमारे फैसले और हमारी ज़िंदगी सबसे बेहतर बनने लग जाती है। वो अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने आप पर काम करना शुरू करें, और फिर उसके बाद जो है दूसरों की तरफ चलें, और उसके बाद उन कामों की तरफ चलें जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। अमूमन कुछ लोग जो है वो कामयाब होते होते जो रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं भाई? क्योंकि जब हम दिमाग में चीज़ बिठा लेते हैं कि हमने ये काम करना ही करना है, हम कर लेते हैं, बट बहुत मतलब मैं हमेशा इसीलिए कहते हैं कि अपनी बातों को, अपनी कामयाबी को, उस राज को सिर्फ अपने तक रखें, अपने गोल्स को अपने तक रखें। हम किसी को बता देते हैं ना तो लोग जो है ना वो दिमाग में बड़ी अजीब अजीब बातें डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकोगे, तुम नहीं कर सकोगे, ये बहुत मुश्किल काम है, तुम्हारे बस का नहीं है, तो वो फिर इंसान जो है ना वहाँ से डिग्रेड हो जाता है, फिर पता भी नहीं चलता कि इंसान पीछे पीछे की तरफ कैसे आना शुरू होता है। बहुत से लोग जो है इसी वजह से आके अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं और वो वहाँ से यू टर्न लेके वापस हो जाते हैं, बट बाद में उनको एहसास होता है कि दुनिया की बातों में मत आए, चार लोग क्या बोलेंगे, उन चार लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। जिंदगी में अगर अपना कोई मुकाम बनाना है तो उसके लिए भी आपको दुनिया वालों को फेस करना पड़ेगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस इस चीज़ का ख्याल रखेंगे चार लोग क्या कहते हैं, अगर इसी चीज़ को लेकर चलेंगे ना तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को दिमाग से निकाल देंगे कि चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोगों का काम है बोलना। सो उनको बोलने दें, आप अपने काम की तरफ तवज्जो दें। तब आप जब एक इंसान किसी तरफ जा रहा होता है तो वह जब हम अपने गोल्स अपने वो काम पहले लोगों को बता देते हैं, फिर उसके बाद सीन ये होता है कि वो जब हमें बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, फिर हमारा दिमाग जो है ना वो नेगेटिव बातें पकड़ कर लेकर आता है। जब आपका दिमाग एक चीज़ पर अटक जाए ना तो फिर वो चीज़ ख़राब होती ही होती है, डेफिनेटली होती है। इंसान की पहचान उसकी सोच और उसके अमाल से होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतें, सोचें और रवैयों को जो है ना बेहतर बनाना पड़ेगा। खुद पर काम करने वाला इंसान हर मुश्किल को जो है एक सीखने का मुकाम समझता है, और वो नाकामी से जो है टूटने के बजाय उसे सबक लेता है, और ये छोटी छोटी कोशिशें जो है ना लगातार करते रहो तो मेहनत इंसान फिर दिल से करता, फिर जब मेहनत इंसान की रंग लाती है तो दुनिया वाले भी देखते हैं, वो चार लोग भी देखते हैं जिनकी वजह से हम उस तरफ रवाना नहीं हो पा रहे थे। अपनी कीमत समझना भी, खुद पर काम करना भी, और इस चीज़ का खुद को एहसास दिलाना कि हमें सिर्फ अपने लिए करना है, अपने बारे में सोचना है, ना कि दूसरों के बारे में सोचना है। तब तक जब तक आप कामयाब हो रहे हैं, जब आप इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए तो फिर आपने दूसरों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि किसी टाइम पे आप भी उसी मुकाम पे थे जिस टाइम पे भी एक दूसरा इंसान खड़ा हुआ है। खैर उसी के साथ साथ गपशप आपके साथ जारी रहेगी, फिर ग्राम एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश आई, अब उस ट्रैक को पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे उसको शामिल करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इस छोटे से BGM को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा।

0: अच्छा ये ट्रैक जो है ना ये आसिम अज़हर की आवाज़ में है और मेरे ख्याल में भी नया नया आया अभी। अच्छा मैंने मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब ये वाला ट्रैक है, मैंने इसकी रील्स वगैरह काफ़ी देखी हैं टिकटॉक पे और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था वाकई में ये वाला ट्रैक है।
1: तेरा शर्माना मेरी जानना कभी।
0: मेरे ख्याल में सिर्फ आसिम अज़हर का नहीं है, कोई और भी सिंगर जो है बीच में सिंगिंग कर रहे हैं। सो लाइज उनते इस ट्रैक को मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सुबुल जी के साथ साथ मैंने इस ट्रैक को सुना और इसके लास्ट में शायरी भी आया यार। मतलब अब मैं जितना शायरी से दूर भागना चाहूँ ना, मैं नहीं भाग सकती। तो जिस इंसान को क्रेज़ होना शायरी का, वो शायरी के पास पास ही रहता है। अब मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब इसके लास्ट में शायरी भी है, और मैंने अचानक मेरा ध्यान पड़ा तो मैंने कहा वाह यार, जो चीज़ मुझे पसंद है वो सिर्फ ट्रैक्स में मिलती है, सच्ची में वो नहीं मिलती है। खैर, अब बातें तो आपके साथ लगी ही रहना है, क्यों ना फरमाइशों को प्रोग्राम में ही शामिल कर दूँ, क्योंकि वक्त जो है वो वक्त का पता नहीं चलता कब कब कितना टाइम हो जाता है, और मुझे आइडिया भी नहीं लगता क्योंकि मैं वक्त की तरफ टाइम की तरफ तो देखती नहीं हूँ आपसे बात करते हुए, लेकिन टाइम का पता नहीं चलता। एकदम ध्यान पड़ता तो पता चलता कि भाई छोड़ जी को मैं शुभ कार होने लगी प्रोग्राम में। तो हम ऐसा करते हैं कि हम फरमाइश को पूरा कर देते हैं, जो फरमाइश हमारे पास मौजूद है उसको करते हैं प्रोग्राम में शामिल। उम्मीद करूंगी कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा। मतलब आरजू, नो, आरजू नाम नहीं है इस ट्रैक का, तेरी दीवानी। तेरी दीवानी ट्रैक को शामिल कर चुकी हूँ प्रोग्राम में। मेरे ख्याल में इसी ट्रैक का लिरिक्स है।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से शामिल करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। सवल प्रोग्राम में ट्रैक शामिल किए जा रहे हैं। ये ट्रैक तो मैंने शामिल नहीं किया था, बट हो गया, तो आइए इस ट्रैक को सुन लीजिएगा। इस ट्रैक के उस बारे को और सा ट्रैक शामिल करेंगे, फिर रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जो रहना है फजा के साथ विद सल्लू राज।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 FM के लास्ट स्टूडियो से। फिर भी हम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, बाद आप सुन रहे हैं सफराज की सब। उसी के साथ साथ ट्रैक शामिल किए जा रहे थे, क्योंकि लास्ट सेगमेंट जो होता है मेरा वो मैं ट्रैक का ही रखती हूँ। बट उसी के साथ साथ वक्त हुआ जाता है अब ख़त्म, अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। छोड़े जाती हूँ आपको एक खूबसूरत सी फरमाइश के साथ। सो अभी तक के लिए कहीं नहीं जाइएगा, इस ट्रैक को सुन के जाइएगा। लेकिन अगर जाना नहीं है तो हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जुड़ी रहेगी। सो कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: You are fame. We are playing.
8: Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।

वेलकम बैक। एक मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर आपका मेजबान आपका दोस्त हुज़ैफ़ हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सुन रहे हैं रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM, जहां बातें होती हैं दिल की, एहसासात की और जिंदगी के खूबसूरत रंगों की। सामीन, जिंदगी एक सफर है, इस सफर में हर रोज हमें नए लोग मिलते हैं, नए तजुर्बात होते हैं और नए सबक सीखने को मिलते हैं। बाज़ोकात एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी के पूरे दिन को रोशन कर देती है और कभी एक अच्छा जुमला किसी टूटे हुए दिल को हौसला दे देता है। आज एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी एक दुआ, एक मोहब्बत, बड़े लफ्ज या एक मुख्तसर सी तवज्जो के मुंतजिर हैं। हम अक्सर बड़ी कामयाबी के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि असल कामयाबी अच्छे अखलाक, नरम रवैये और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने में है। समीन, इस वक्त हम आपकी ख्वाहिश पे, हमारे एक कॉलर की ख्वाहिश पे सॉन्ग प्ले करने लगे हैं। सुनिए और सुर धुनिए रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM, आपका अपना रेडियो।

सामीन रेडियो फजा है, इस वक्त है, वक्त हुआ है एक अगले सॉन्ग का। आदत के टाइटल के नाम से ये सॉन्ग है, सुनिए और सुर सुनिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप,
3: आशिका तो फोन मुखड़ल पॉप ले, सजना ने भूए की चिकता ले।
1: फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are saying, we are playing.
1: Fazan 97.1 FM.

चीनी कहावत है कि जिसे मुस्कुराना नहीं आता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। ऐसे ही चीनी कहावत है कि शादी के दिन कोई और दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत नहीं होती।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM और मैं हूं आपका मेजबान हुज़ा फ़ैदर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि अभी जो खूबसूरत गाना आपने सुना उसने आपके दिल को ताजगी बख्शी होगी और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बखेर दी होगी। दोस्तों, जिंदगी के दौर में हम अक्सर बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे कीमती चीजें वो होती हैं जो खरीदी नहीं जा सकती। वालदेन की दुआएं, दोस्तों की मुखलिसी, किसी दुखी दिल की मुस्कुराहट और वो सुकून जो इंसान को अपने रब की याद से हासिल होता है। याद रखिए, कामयाब इंसान वो नहीं जो सिर्फ बड़ी मंजिल हासिल कर ले, बल्कि कामयाब वो है जो रास्ते में इंसानियत, अखलाक और मोहब्बत को भी साथ लेकर चले। अगर आप किसी के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत सरमाया नेक किरदार।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था
1: राज।
2: दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे जिंदगी के चंद ऐसे सुनहरे उसूलों की जो न सिर्फ हमारी शख्सियत को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे मुआशरे को भी खूबसूरत बनाते हैं। पहला उसूल है वक्त की कदर। वक्त वो दौलत है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आती। दुनिया की हर चीज दोबारा हासिल की जा सकती है लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने वक्त को कीमती समझिए और ऐसे मुस्बत कामों में सर्फ कीजिए। दूसरा उसूल है अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक वो खुशबू है जो इंसान के जाने के बाद भी लोगों के दिलों में बाकी रहती है। नर्म लहजा, इज्जत से बात करना और दूसरों का ख्याल करना इंसान को अजीम बनाता है।
3: मैं तुम्हारी।
2: तीसरा उसूल है उम्मीद। जिंदगी में हालात जैसे भी हों उम्मीद का दामन कभी ना छोड़िए। उम्मीद वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है।
3: सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था, तुम भी।
2: चौथा अहम उसूल है कि शुक्रगुजारी। जो इंसान अपने पास मौजूद नेमतों का शुक्र अदा करता है उसके दिल में सुकून पैदा होता है। कभी उन चीजों को न गिनिए जो आपके पास नहीं बल्कि उन नेमतों को देखिए जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई हैं और उन पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा कीजिए। शुक्र ऐसी नेमत है कि जिससे आपकी नेमतों में इजाफा होता है। जिंदगी गुजारने के लिए शुक्र को लाजिम पकड़िए, यही अहम और अहमियत का हामिल है।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम

0: सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: यू आर स्टेइंग। वी आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

सभी क्रम घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है, शाम जवान हो रही है और रेडियो फजा की महफिल अपने उरूज की जानिब गामजन है। तो ये अल्फाज को थोड़ा आराम देते हैं, मौसीकी को माइक संभाले देते हैं और सुनते हैं एक ऐसा गाना जो आपके मूड को नई ताजगी देगा। कहीं मत जाइएगा क्योंकि गाने के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे उन दिलचस्प वाकयात की जो शायद पहले कभी आपने ना सुने हों। सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM, क्योंकि रेडियो फजा आपका अपना रेडियो है।

समय ने कॉलर की फरमाइश पे हम गाना प्ले करने चले हैं। पागल नहीं होना, सुनिए अपने रेडियो, रेडियो फजा 97.1 FM पे।

सामीन रिजा, आपने सुना गाना जो यकीनन आपके दिल को छुआ होगा। इस गाने ने अभी खड़ी की सुइयां आगे बढ़ी हैं, चूंकि प्रोग्राम भी अपने अख्तिताम की तरफ रवा दवा है। न्यू सॉन्ग सुनिए और सर धुनिए, क्योंकि रेडियो फजा 97.1 FM आपका अपना रेडियो है। सुनते रहिए और सुर धुनिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey, Adam.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
10: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
15: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
15: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
15: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
15: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
15: टेस्ट भी, वाइब भी।
16: You are listening 97.1 FM.
17: सच है प्रिया, सब कहते हैं मैंने तुझको भी।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है.
3: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
2: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ.

0: it's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल कर

0: 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
2: Get ready to move.
3: It's all about the beats. Wow,
4: FM. Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिसनिंग 97.1 FM।
9: नॉनस्टॉप हिट्स, नॉनस्टॉप एनर्जी, रेडियो फजा 97.1 FM।
10: You are playing. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.

0: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान।
1: You are listening 97.1 FM।

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are Fazan 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM.
13: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: You are listening to 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं।

0: conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: यू आर लिसनिंग टू 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

कोई से तुमको देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी, वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.